रेडियो काठमाडौँ 92.1 द्वारा उत्पादित लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी चन्द्रमणि गौतमको साथमा रेडियो काठमाडौँ नेटवर्कबाट देशैभरि

राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई संघुवा सभा राष्ट्रीय कृषि आधुनिकी

77376 भोजपुर राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण भोजपुर राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भोजपुर राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई संघुआ सभा संघुआ सभा।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक इट्स 6 PM
2: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हरपल
1: हर तपाईं
0: सँगै
2: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: एकमात्र डीटीएच सेवा जिसमें
1: खुशी को कनेक्शन
0: जीवन में थोड़े कुछ जहां हमी चोइस करने सुविधा हाहाखबर.com जहां तथक चोइस कर सकूँ।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 PM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।